नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगजो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु

तुसी सुनोगे प्रोग्राम आपके लिए 9:30 बजे प्रोग्राम आज के फनकार 10 बजे छाया गीत 10:30 प्रोग्राम ढलती जाए रात विविध भारती मुंबई तो 11 बजे साढ़े अज के प्रसारण सभा की समाप्ति होगी।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: अगला शब्द सरबन करदे आं भाई इंद्रजीत सिंह खालसा पासों गायन कीता होया।

0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: आओ सर्वन कर दें भक्ति रचना मोहिंदर कपूर दी आवाज़।

0: खिलखिलाती सुबह है, ताजगी भरा है सवेरा, फूलों और बहारों ने रंग अपना है बिखेरा। खिलखिलाती सुबह है, ताजगी भरा है सवेरा, फूलों और बहारों ने रंग अपना है बिखेरा। बस इंतजार है आपकी मुस्कराहट का, जिसके बिना ये दिन है अधूरा। जी, लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम है सजरी सवेर, तुहाडा रेडियो दोस्त सुखमान ते मेरे नाल ने
1: अमनदीप कौर।
0: जी। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾਬ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, पिंडां आले ते शहरां आले प्रोग्राम दे तहत आ रही है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दी ओ आवाज जिसने बहुत थोड़े समय विच ही ड्यूट गीतां दी दुनिया च बनाया अपना राज। मैं

जी बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग्स दी महारानी, हर दिल दी धड़कन। मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरा आले।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदी भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात

0: सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
3: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 30 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे

0: पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
2: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। Union Minister JP Nadda says, government ready to discuss neat paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing.

0: भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो रोमानिया की 2 दिन यात्रा ते होंगे। 33वीं राष्ट्रमंडल खेडा की शुरुआत आज तो ग्लासगो च हो रही है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकां दी भलाई सारे सुधारां दे केंद्र विच होनी चाहीदी है ते शासन पहलकदमियां लोकां दीआं जरूरतां मुताबिक होणियां चाहीदियां ने। उन्हां कहा कि सुधारां नाल ना सिर्फ सरकार ते कामकाज भी सुधार होना चाहीदा है सगों भारत दी विकसित राष्ट्र बनण दी यात्रा नूं भी तेज करना चाहीदा है। प्रधानमंत्री ने एक गल विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं अगे वधाउण लई देहाती विकास खेतीबाड़ी समाजिक भलाई अते सहायक खेतरां दी प्रगति दी समीक्षा करन लई सकत्तरां नाल इक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी करदे होए कीतियां। प्रधानमंत्री ने निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग ते होई इस मीटिंग शासन नूं मजबूत करन अंतर मंत्रालय तालमेल नूं बेहतर बनाउण अते नागरिकां दी भलाई नूं वधाउण ते उद्देश नाल सुधारां नूं लागू करन विच तेजी लियाउण ते केंद्रित सी। तेजी नाल विकसित हो रहे शासन दृष्टिकोण नूं उजागर करदिआं श्री मोदी ने बदलदे समें मुताबिक शासन प्रक्रियावां नूं आधुनिक बनाउण दी जरूरत ते जोर दित्ता। उन्होंने मंत्रालय अते विभागां विच उभर रही जरूरतां दी इक व्यापक निशानदेही करन लई कहा तां जो इह यकीनी बनाया जा सके कि शासन प्रणालियां भविख लई चुनौतियां प्रति जवाबदेह रहन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास टीचियां नूं प्राप्त करन लई इक संपूर्ण सरकारी पहुंच अपनाउण दी महत्ता ते वी जोर दित्ता। मंत्रालयां विच वधेरे तालमेल दी मंग करदिआं उन्हां कहा कि विकसित भारत दा दृष्टिकोण इक लोक लहर बनना चाहीदा है जिस विच देश दे नौजवान इस राष्ट्रीय मिशन दी नींह रखण। नौजवानां विच नशियां दी दुरवरतों दे मुद्दे बारे प्रधानमंत्री ने एक संस्थागत विधि दी जरूरत ते जोर दित्ता जो विभागां विच तालमेल नूं उत्साहित करे अते चुनौती नूं वधेरे प्रभावशाली ढंग नाल नजिठण लई नौजवान केंद्रित पहलकदमियां नूं एकीकृत करे। खेडा बारे श्री मोदी ने भारत नूं एक आलमी खेड मंजिल वजों कायम करन लई एक एकीकृत विकास रणनीति दी वकालत कीती। उन्हां कहा कि देश नूं खेड सैर सपाटा तकनीकी नवीनता अते खेतर विच स्टार्टअप अगवाई वाले हलां नूं उत्साहित करदे होए वड्डे अंतरराष्ट्रीय खेड समागमां दी मेजबानी करन दी इच्छा रखनी चाहीदी है। प्रधानमंत्री ने खेतीबाड़ी खेतर नूं मजबूत करन विच पीएम कुसुम योजना दी परिवर्तनकारी संभावना दा भी जिक्र कीता जिस नूं किसानां वल्लों व्यापक तौर ते अपनाया गया है। उन्हां ने उभर रहे अंतरराष्ट्रीय मौकियां अते भविख दीआं रुजगार मंगां लई भारत दे कार्यबल नूं तैयार करन लई विश्व पदरी हुनर जरूरतां दी पड़चोल करन दी जरूरत ते भी जोर दित्ता। सीनियर भाजपा नेता ते केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद विच नीट पेपर लीक मुद्दे ते चर्चा करन अते इस मुद्दे दे स्थाई हल नूं यकीनी बनाउण लई एक प्रभावशाली नीति बनाउण वास्ते तैयार है। नवी दिल्ली विच मीडिया नूं संबोधन करदिआं श्री नड्डा ने कहा कि इल्जाम लाउण अते लगातार टीचे बदलण दी बजाय विरोधी धिर नूं पेपर लीक ते गंभीर मुद्दे ते एक अर्थपूर्ण संसदी चर्चा विच हिस्सा लेना चाहीदा है। उन्हां कहा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय चिंता है ते किसी एक सरकार जां राजनीतिक पार्टी तक सीमित मुद्दा नहीं है, फिर भी विरोधी धिर इस मामले दा सियासीकरण कर रही है। उन्हां कहा कि यह एक गंभीर समस्या है जिस ते डूंघाई नाल अते ईमानदारी नाल चर्चा होनी चाहीदी है। श्री नड्डा ने कहा कि संसद सब तो ढुकवां मंच है जिथे इस मामले ते डूंघाई नाल चर्चा हो सकती है। उन्हां भी कहा कि विरोधी धिर नूं म्याद निर्धारित करनी चाहीदी है अते हर पहलू ते चर्चा कीती जानी चाहीदी है तां जो एक ठोस नीति बनाई जा सके। श्री नड्डा ने विरोधी धिर नूं अपनी जिम्मेवारी निभाउण अते इस मुद्दे नूं हल करन अते स्थाई हल वल अगे वधण लई सरकार नाल रल के काम करन दी भी अपील कीती।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कांग्रेस अते विरोधी धिर शासित राज्यां विच वख-वख प्रीख्यावां दे पेपर लीक होण दा मुद्दा भी उठाया। उन्हां कांग्रेस नेता ते लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ते चोणवें होण दा इल्जाम लाया ते सवाल कीता कि उह अजिहियां घटनावां ते चर्चा क्यों नहीं कर रहे। उन्हां इह भी इल्जाम लाया कि श्री गांधी इस मामले तों सियासी फायदा उठाउणा चाहुंदे ने जो कि मंदभाग है। श्री नड्डा ने कहा कि श्री गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान एक पेशकारी दित्ती जिस विच उन्हां ने 150

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए के और बॉब की आवाजों में देशी बॉयज फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और प्रीतम के हैं तर्ज।
1: Make some noise for the Desi

अगला गाना हमने लिया है डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई इस फिल्म से। आवाजें हैं आकृति कक्कर और अपेक्षा दांडेकर की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई तितलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पीके फिल्म का गाना। गीतकार है अमिताभ वर्मा और संगीतकार है शांतनु मोइत्रा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेष।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जबड़िया जोड़ी फिल्म से राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजें हैं, शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची के बोल, और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
8: तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गाना। गीतकार थे शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, आए तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, आए तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम, बोल दो बापू।
4: बोल दे बेटा।
3: बाप

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के

मेरा उसने निकाला मेरा दीवाला, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

The whole thing is that ke bhaiya sabse bada rupaiya. Na biwi na bachcha na baap bada na maiya. The whole thing is that ke bhaiya sabse bada rupaiya. बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: Welcome on!

ஏன் விடுதுடா?

0: கண்ணா என் கண்ணா
1: பக்கம்மா பக்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
0: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
0: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
0: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता है ना।
0: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहले बोला ना ऐसा बात। डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।
4: तुम नहीं गाना।

0: तुम जाना हम गाना,
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे हैं गाना गाना।
2: चल चल
1: भी तुम बताना बताना
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
4: यह कच्चा

जो आवाज लगाए चोटे कर दूंगा। सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगित सकदम सकजम सकजम सकनम सकदम सत्संगित।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋರೆ ಗಣಜಿ.

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देवबर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आरडी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: परसों खाया था ना तू मतलब मेरा बेटा ने
1: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: ही साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा।
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
3: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम। तेरा दिल और मेरा दिल एक हो जाएंगे हिल मिल, ऐसा तुझ में खो जाऊंगा। शकल का मैं

0: मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ। अरे
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

एक बात है दिल में आज, एक बात है दिल में आज, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस तुम्हें ही चाहते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस पहले हिंदी फिल्मी गीत नाल, जिसनों आवाज़ा दित्तियां ने लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने, गीतकार ने सावन कुमार, संगीतबद्ध किया उषा खन्ना ने, फिल्म सौतन विचों।

जी बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग्स दी महारानी, हर दिल दी धड़कन। मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरा आले।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रावधान करता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000

0: करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से दो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोरदोना सियोनोस्का दावकोवा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिला राष्ट्रपति का होना गर्व की बात है। स्कोपे में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दावकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 बुरी तरह प्रभावित है। बनिहाल और उधमपुर सेक्टरों के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन, कीचड़ और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके कारण लगातार दूसरे दिन वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मौसम में सुधार और सड़क मरम्मत पूरी होने तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मैं हूं आपके साथ रंजन।

ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है फिल्म रामायण, और उसके अंदर जो राम का रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर का भी कुछ ही दिन पहले दिल्ली आना भी हुआ था, कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, या फिर एक इवेंट को अटेंड करने के लिए, जहां उनको आंखों में कुछ दिक्कत चल रही है। बहुत सिंपल सी एक इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस आई थिंक, उससे ये पीड़ित रहे। और हमें लगा भी 2-3 दिन में नॉर्मली ये ठीक हो जाता है, लेकिन अब हाल ही में खबर ये आई है कि रणबीर देश से बाहर कहीं जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे उनको पापराजी ने घेर लिया और उन्होंने काला चश्मा बाकायदा लगाया हुआ था, और वो कह रहे थे कि ये फ्लैश मेरी तरफ मत कीजिए। सो वी विश यू स्पीडी रिकवरी रणबीर। और वैसे दिल्ली और आसपास पास का मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, जहां बारिश के मौसम में आंखों में ये इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। और अगर आपको किसी को हुआ है तो हाथ धोइए, और आंखों को या फेस को हाथ लगा के किसी दूसरे से हाथ मत मिलाइए, और खाने से पहले हाथों को अवश्य धोएं। बाकायदा तो कुछ ही दिन में आप बड़े अच्छे चंगे भले हो सकते हैं। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। आपसे पूछेंगे बॉलीवुड सरताज का सवाल, बट आफ्टर दिस सॉन्ग।

सुन रहे हैं आकाश वाणी का रेनबो चैनल और मैं हूं आपके साथ रंजन। कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स और जैसा कि दस्तूर है हमें वो दस्तूर जरूर निभाना पड़ेगा। और अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं बॉलीवुड सरताज का वो सवाल जिसके लिए आप रहते हैं बेकरार, क्योंकि इसका सही जवाब देके बन सकते हैं आप सरताज। वाह क्या बात है। तो आज का सवाल है, एक था टाइगर फिल्म में कैटरीना कैफ ने जो किरदार निभाया था उस किरदार का नाम क्या था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9868107070 पर, और हो सकता है आप बन जाएं आज बॉलीवुड सरताज। तो फिर रहिए नहीं लापता, हमारा यही है दिल का पता, आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ, कई बार हमारा मन करता है कि हम देश में हैं या विदेश में हैं, कहीं भी हैं, और अगर काम में कहीं व्यस्त हैं तो बहुत ज्यादा समय तक अगर आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो आपका मन करता है कि आप उस काम से लापता हो जाएं और कहीं ब्रेक पे चले जाएं, छुट्टी पे चले जाएं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही कुछ किया है हाल ही में रकुल प्रीत ने, जो बता रही है कि उन्होंने पिछले 13 साल से कोई लंबी ब्रेक नहीं ली थी, बिकॉज वो इतनी व्यस्त रही अपने फिल्मी करियर को बनाने में, उसे संवारने में, सजाने में, दैट हार्डली कोई समय मिला। और ऐसी बात कभी शाहरुख खान ने एक दफा कही थी किसी के सामने कि भाई इतना बिजी हूं, इतना व्यस्त हूं कि बिल्कुल आराम करने का भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे में आई थिंक सरोज खान उस समय उनके आसपास थी, उन्होंने कहा कभी भी ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो फिर आराम होगा और आप काम के लिए तरसेंगे। खैर, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। और हम अभी बात कर रहे हैं रकुल प्रीत की, तो रकुल प्रीत 20 दिनों के लिए लंबी छुट्टी पे गई, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज यू नो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू अनवाइंड योरसेल्फ। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, बहुत ज्यादा समय है, लेकिन लंबी छुट्टी के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो एक अलग तरह की परेशानी है। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है, तो कितना भी पैसा हो, तो ये डबल द प्रॉब्लम है। तो खैर, अब अपना अपना आप देख लीजिए। सुनिधि चौहान की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना। अगर आप हॉलीडे मूड में हैं तो घूमने जाइए, निकल जाइए, मॉनसून का टाइम है।

जी, तो अभी हम बात कर रहे थे रकुलप्रीत की, और हम ये भी जानते हैं कि आप भी पसंद करते हैं हॉलीडे पे जाना, लेकिन बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां रहती हैं ऑफिस में, बॉस आपके जो हैं वो छुट्टी नहीं देते हैं, बाकायदा 2-3 महीने एडवांस में बताने पर भी कई बार लास्ट मोमेंट पे ज्यादा काम की वजह से आपको वापस ऑफिस बुला लिया जाता है। बट इट हैपेंस, यू नो, लाइफ है, होता है। खैर, हमारा आज का सवाल है बॉलीवुड सरताज का, उसमें हमने आपसे जो पूछा एक बार फिर से दोहराने का समय है। कैटरीना कैफ बहुत बिजी हैं आजकल, लगभग 2 साल से उन्होंने कोई मूवी भी नहीं की है, क्योंकि अच्छी खबर है, बिकॉज उनकी जिंदगी में एक नया मेहमान आया है, विहान, विकी और कैटरीना का सुपुत्र, तो उसकी देखभाल में लगी हैं और बहुत मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन उनकी बड़ी खास फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है, एक था टाइगर, उसके अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका आपने नाम बताना है, और हो सकता है आप आज बन जाएं बॉलीवुड सरताज। भेजिए इसे, व्हाट्सएप कीजिए इस आंसर को 9868-10-70-70 पर, 9868-10-70-70।

0: धमाल फूड से आपने गाना सुना कहर, और इसके अंदर आपने जो लिरिक्स सुने हैं आप समझ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग है एंड अपबीट सॉन्ग है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे, लेकिन आपका मैच जाएगा क्योंकि आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। हम पहुंचते हैं आप तक 102.6 MHz दिल्ली और आसपास, इसके अलावा ढेरों फ्रिक्वेंसीज पर, और अगर आप चाहें तो हमारा न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ना सिर्फ रेनबो बल्कि प्रसार भारती के बेशुमार चैनल्स आप वहां पर पाएंगे।
1: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे

0: तालाबों को बचाना है, तालाबों की रख रखाव की जिम्मेदारी ले, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
2: हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे? अरे
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इंफॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आज है 23 जुलाई 2026 और वैसे आज ही के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो आप सभी को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और हम सभी से कुछ जानते हैं कि 1927 में जो सफर शुरू हुआ था बॉम्बे स्टेशन से और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत, वो बाद में ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी के नाम से, जैसे आप हमें जानते हैं, इस स्वरूप में हम आप तक पहुंचे। और ये 90 सालों से ज्यादा का सफर हम आपके साथ बना रहे हैं। और आज साथ ही साथ आज हम एक बड़े खूबसूरत बात और आपको बताने जा रहे हैं, मतलब एक और बात है। यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है और उसका रीजन है आज है हिमेश रेशमिया का बर्थडे भी। तो देखिए, वैसे म्यूजिक से उनका नाता है, आवाज का उनका नाता है, बहुत मल्टी फैसेटेड व्यक्ति हैं। ये व्यक्तित्व तो सिर्फ ये म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं है, सिंगर भी हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूसर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बहुत सारे काम ये जानते हैं। और सिंगिंग में कई लोगों को हिमेश की आवाज उतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक दौर था जब लगातार इनकी बहुत सारी पर्सनल हिट एल्बम्स इन्होंने दी, फिल्मों में काम किया। सलमान खान की फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू किया था और फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या एज अ कंपोजर। और फिर इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। इनको बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि कुछ एक इनकी करीबी फिल्म है, जैसे दुल्हन हम ले जाएंगे, हमराज, बंधन, हेलो ब्रदर। और इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि हिमेश रेशमिया साहब को आज जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना भी गाते हैं, तो इन्हीं की आवाज में एक नहीं बल्कि दो गाने बजाऊंगा इस प्रोग्राम के दौरान। 1300 से ज्यादा गाने इन्होंने म्यूजिक दिया है उसका, और कुछ में अपनी आवाज भी। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हम बात कर रहे हैं आज हिमेश रेशमिया साहब की, और वो मना रहे हैं अपना आज जन्मदिन। मैं शायद आपको बताना भूल गया कि वो ना सिर्फ डायरेक्शन में रहे, म्यूजिक डायरेक्शन में रहे, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी रहे और एक्टिंग में भी उन्हें हाथ आजमाया। अपने गीतों पर तो आप उन्हें गाते हुए देख ही लेते हैं, साथ ही साथ उनकी एक मूवी आई थी आपका शुरू, खैर बहुत नाम कमाया। और एक दौर था, मैं जैसे कह रहा था कि हर दूसरी एल्बम में, हर दूसरी मूवी में उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनके गीत एकदम से हिट हो गए थे। कुछ वर्ष पुराने ही मैं बात कर रहा हूँ, और उनका वो स्टाइल जहाँ वो कैप लगा के एक रॉक स्टार पॉप स्टार की इमेज उन्होंने बनाई, जैसे बहुत से लोगों ने उसे फॉलो किया, वो टोपी लगाना और गर्दन ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए गाना, जहां कुछ लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया कि वो नाक से गाते हैं। खैर नाक से गाते हैं या मुंह से गाते हैं।

0: सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर। और बस अब आपको एक बार आखिरी बार हम सवाल पूछ लेते हैं बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए, और क्योंकि थोड़ी देर में हम किसी को एक सरताज बनाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। हमारा जो सवाल है आज का वो ये है कि कैटरीना कैफ की एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, उसमें उन्होंने जो रोल जो किरदार अदा किया था उसका नाम क्या था। आपको अगर सही जवाब पता है तो 9868107070 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे और बताएंगे कि अनुपम खेर कौन सी आवाज किस मूवी के अंदर देने वाले हैं, और वो मूवी कितनी बड़ी है या छोटी। बट दिस एंड लॉट्स मोर आफ्टर ब्रेक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आफ्टर द ब्रेक आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। और जैसा मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि रामायण फिल्म जो बहुत एंटिसिपेटेड मूवी है, दो पार्ट में बन रही है, दिवाली पे इसकी रिलीज है। नितीश तिवारी इसके डायरेक्टर हैं और राम प्रभु राम के रोल में हैं, लॉर्ड राम के रोल में हैं रणबीर कपूर इसमें, और बाकी कास्ट में साई पल्लवी हैं और यश है रावण के रोल में, रवि दुबे हैं लक्ष्मण के रोल में, और अब नई जो आवाज जुड़ी है वो अनुपम खेर की है जो जटायु के किरदार को आवाज देंगे। पहले अमिताभ बच्चन को भी इसके लिए सोचा जा रहा था लेकिन अब फाइनलाइज हो गया है कि अनुपम खेर ही ये रोल ये किरदार अदा करेंगे। विक्रांत मैसी के आने वाले प्रोजेक्ट का क्या है नाम? OTT पे आई थिंक कल ही रिलीज होगी ये मूवी, वो बताऊंगा बट इस प्यारे से गाने के बाद। और थोड़ी देर में बनाएंगे किसी एक को बॉलीवुड सरताज। जुड़े हैं हमारे साथ, सुनते रहें आकाशवाणी पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: हमारा वैसे भी कुछ नहीं,
1: सब तेरा सब तेरा,
0: जो भी है वो सब आपके लिए है, क्योंकि हम जो ये प्रसारण करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, आपको ध्यान में रख के करते हैं। और हमारे साथ इस समय कोई जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो,
0: भुवनेश्वर नेतम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
2: गुड मॉर्निंग सर,
0: कैसे हैं आप आज?
2: जबरदस्त सर, आज का दिन बहुत आपके साथ बात हो रहा है और जबरदस्त लग रहा है सर।
0: और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपने छत्तीसगढ़ से विलेज तोरोंडी से हमें कॉल हमें मैसेज किया है और हमने आपको कॉल किया है, तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज आप हमारे बनते हैं बॉलीवुड सरताज।
2: थैंक यू सर।
0: ओके, हमारे सवाल का जवाब एक बार ऑन एयर भी दे दीजिए। एक था टाइगर में कैटरीना कैफ ने जो किरदार निभाया था, उसका क्या नाम था? ओके, वंडरफुल। तो आज कुछ मीठा बना लीजिएगा घर में, है ना, मुंह मीठा कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मूवी वैसे आपने देखी है वाली कि नहीं?
2: देखता हूँ सर।
0: देखिए, अच्छा अच्छा रेनबो सुनते रहते
2: बहुत बढ़िया जी, पर सुन मोबाइल ऐप से सुनता हूँ सर।
0: चलिए इसी तरह पूरा दिन सुनते हैं। कितनी देर सुनते हैं हमें दिन भर में?
2: दिन भर सुनता हूँ सर, सवेरे से लेकर शाम तक, सिटी लाइट तक।
0: अच्छा, उसके बाद आप अपना आराम दे देते हैं, विराम करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे जो विनर हैं भुवनेश्वर नेतम हैं छत्तीसगढ़ से, और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। बस अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जाते जाते आपको मैं बताना चाह रहा था कि विक्रांत मसी की OTT पे जो रिलीज होने वाली मूवी है उसका नाम है मुसाफिर कैफे, और ये उन्होंने खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाई है। एक दौर था जब विक्रांत शायद किसी कैफे में काम भी करते रहे हैं, अब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाया है, जहां पे मूवी बनी है मुसाफिर कैफे। तो आप देख लीजिएगा, OTT पे आई थिंक मोस्ट प्रोबली कल रिलीज है। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन।

साहब, घड़ी ये हमारे को इशारा कर रही है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अगले कार्यक्रम प्लेट कूल में आपके साथ रहेंगे शालू। रंजन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात 1 बजे के बाद। 1 बजे से आपके साथ मैं रहूंगा। फिलहाल आपसे लेता हूं इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11:59 ਤੇ 47 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, 12:05 ਤੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों

16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामची जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग्स दी महारानी, हर दिल दी धड़कन। मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरां आले।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्रामा संबंधी सूचना मिति 26 जुलाई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों नाल सांझी करनगे अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश किया जाएगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी 12:40 का समा हो चुका है, तो प्रोग्राम चल रहा है घर परिवार, तो गल असी कर रहे हैं जी मीह बारे। सो ज्योति, आप गल खाण पीण की कीती है कि वाकई जो मीह का मौसम होंदा तो साडा चटपटा कुछ वधिया जिहा खाण नूं दिल करदा, तो जो मीह पैंदा तो फिर एक गल होर हुंदी है कि जिवें हुण गीत चल रहा सी कि सौण दी झड़ी वी लगी, सौण दी झड़ी है ना, भिज्जण दी गल होई, तो जो मीह आंदा तो तुहाडा दिल करदा नौण नूं बारिश दे विच।
4: छोटे हुंदे तां सीमा जी बहुत नहांदे हुंदे सीगे, हुण थोड़ा जिहा गुरेज़ करन लग गए इन्हां चीज़ां तों। आपां जिवें कहिंदे बारिश तां आंदी आंदी है, नाल थोड़ी जी आपां नूं सेहत संभाल दी वी ज़्यादा जरूरत पैण लग जांदी है इन्हां चीज़ां।
3: जी देखो, उह तां चलो बाद दी गल है, पर देखो छोटे हुंदे आपां मीह च भिजदे वी सी है ना, नचदे टपदे वी सी, सानूं साडे माँ प्यो रोकदे वी नहीं सी, ते असीं पूरा इंजॉय करदे सी है ना। ते अज कल असीं बच्चियां नूं थोड़ा जिहा, वैसे देखो उह जी बारिश मैनूं लगदा रहि वी नहीं गई, मैनूं तां लगदा हुंदा उस दिन बारिश दे विच मैं थोड़ा भिजदी गई, रस्ते च बारिश आ गई और जिहड़ा पानी सीगा बारिश दा मेरी अखां च पै रहा सी, मेरी अखां मच रहीआं सी।
4: हांजी हांजी हांजी,
3: ते हुण पोल्यूशन बहुत ज्यादा, वातावरण साडा दूषित हो चुक्या, ते उह चीज़ वी देखो मायने रखदी है, ठीक है है ना। ते इह चीज़ वी हैगी है, पर कहिंदे हुंदे पहलियां एक दो बरसातां छड्ड के बाद च कहिंदे हुंदे थोड़ा बहुत जे मीह पै रहा इंजॉय वी कर लेना चाहीदा है, पर एक गल इह वी है कि सेहत दा ध्यान जिवें तुसीं कहा कि उह वी रखण दी बहुत जरूरत है ना।
4: क्योंकि इन्हां दिनां च जिवें आपां देखीए ना, मक्खी मच्छर वी बहुत हो जांदे आ, डेंगू मलेरिया दा फैलन दे थोड़े जे चांस वध जांदे आ,
3: वध जांदे आ। उस तो पहला तो गल है कि भिज के बच्चे जो उदो तो पता नहीं लगता बच्चे भिज रहे है ना, इंजॉय कर रहे, पर उस तो बाद फिर सर्दी जुकाम लगन का भी डर हुंदा है, सेहत बुखार कई बार बच्चे नूं हो जांदा है। सो चीजा भी ध्यान रखनिया चाहीदियां, ठीक है, थोड़ी देर बच्चे नूं हो करन दो। अच्छा छोटे हुंदे तुहानूं याद होना है सेहत की गल भी आप कर रहे हैं, तो करांगे भी। मैनू एकदम वह चीज़ आ गई, मैनू किश्ती याद आ गई, कागज़ दियां बनिया हुई किश्तियां, छोटे हुंदे पानी खड़े आंदा तां असीं बना बना के असीं तरांदे हुंदे सी।

0: जी
1: जी
0: हाँ जी
1: अदा कितना?
0: मैम, हाँ जी हाँ जी मैम, बहुत ये तो बहुत मजेदार है। एक खेल हुंदा सी बरसात दा,
1: हाँ,
0: है
1: ते
0: ना।
1: ओ चीजा अजकल गायब हो गई हैं।
0: बिल्कुल
1: समय दे नाल बहुत
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: बहुत कुछ बदल गया
1: बदल
0: मैम,
1: गया
0: बहुत
1: है ना।
0: कुछ बदल
1: ते
0: गया।
1: ओ त्योहारा नु मनाउन दा, या जिवें बारिश नु कहते हुंदे आ कि जेड़ा पहला आपां एंजॉय करदे सी, अजकल ओ चीज नहीं रही। पहला सब कुछ छड के काम कार आपां बैठ जांदे सीगे, है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: देखण वास्ते बारिश नु, आसमान वाल देखदे सी, बारिश देखदे सी। ते ओ चीज हुण तां है नहीं, हुण तां असी मोबाइलां साडे हत्थां विच नहीं, ते असी ओ देखना ज्यादा पसंद करदे
0: हाँ
1: आ। ये
0: जी हाँ
1: चीज भी
0: जी
1: हैगी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सो कुदरत तो असी थोड़ा थोड़ा दूर
0: थोड़ा
1: हुंदे
0: दूर
1: जा
0: हो रहे
1: रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ जी
1: हां,
0: हाँ जी हाँ जी
1: सो फिर सेहत दी गल आपां कर रहे हैं कि जदों भिज जाना है, जां बच्चे जदों ज्यादा, कई वारी हुण बच्चे खेल रहे हैं, नहीं बच्चा नूं नहीं समझ हुंदी, माँ प्यो नूं रोकना चाहिए, रोक भी दिंदे बच्चे, कई बार नहीं सुनदे। ते हुण
0: हाँ
1: मावां तां देखो
0: जी
1: रसोई च लगियां होईयां, भी सिद्धी जी गल
0: हाँ
1: आ,
0: जी
1: मालपुए
0: हाँ जी
1: बनाउण
0: हाँ
1: दे
0: जी
1: विच,
0: हाँ
1: गुलगुले
0: जी
1: बनाउण दे विच, पुड़े बनाउण दे विच।
0: हाँ जी
1: ते फिर आपां सेहत नूं लैके की एहतियात बरत सकदे हैं?
0: जी बरसाती मौसम दे विच ना, सब तो पहला जेहड़ा पानी जेहड़ी अपनी आपां कह दिए भी अपनी जरूरत है सब तो ज्यादा, है ना, रसोई च भी पीण च भी थोड़ा जा ओनू ध्यान नाल वरतीए पानी, क्योंकि सब तो पहला दूषित हुंदा है दे विच,
1: हाँ बिल्कुल।
0: है ना। पानी पीण वेले ध्यान रखिए, उबाल के पीए। वैसे तो अजकल आरो घर घर लग्या होया आरो दा पानी पीता जांदा, आपां सारी इन्हां चीजां नूं वैसे तां
1: अवेयर हाँ इस चीज
0: अवेयर
1: ने
0: हैगे
1: लेके।
0: इन्हां चीजां नूं लैके।
1: पर फिर
0: पर
1: भी ये चीज भी कही जाती है कि जेहड़ा पानी है ना, उबाल के जिन्ना वो साफ जा वो शुद्ध हुंदा है, शायद होर तरीके नाल नहीं हुंदा।
0: हाँ
1: खैर वो चीज
0: जी
1: भी बारिशां दे दिनां विच कुछ कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए कि पानी नूं उबाल के ठंडा करके फिर असी उस चीज नूं वरतीए।
0: वर्ती है, हाँ जी बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल
1: ते खान पीन वाली चीजां च ये नहीं हैगा कि रोज फिर असी कढ़ाई चढ़ाई रखी ते रोज रोज तलियां हुई चीजा खाइया, वो भी साडी सेहत
0: हाँ
1: दे
0: जी
1: लई
0: हाँ जी
1: सही नहीं हैगी है ना।
0: हाँ
1: हुण तुसी
0: बिल्कुल
1: ग्रेज करना है, हुण
0: करना
1: तुसी
0: है।
1: ये नहीं कि
0: हाँ
1: रोज मीह
0: जी
1: पै रहे तो तुसी रोज पकौड़े कढ़ने दे, अज मैं मालपुए कढ़ लां, अज मैं कर लां। थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैना है साडियां भैणां नूं भी। ते बाकी ये है कि चलो ऐ महीना खुंदा मैनूं लगदा जदों मीह पैंदे आ ते असी इंतजार भी करदे हुंदे आ, ते जिहड़े मौसम है ना, जो भी बारिश दा इंतजार कर रहे आ साडी फसलां लई भी, ओह बहुत
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: ना
0: और
1: लाहेवंद है
0: जरूरत
1: मीह।
0: देखो, हाँ जी हर एक मौसम दी हर एक तरीके ना किसानी नु चाहिए चाहिए आपां नु।
1: जी बिल्कुल जी।
0: हाँ जी
1: ते कई वारी ऐदा हुंदा कि जदों हुण असी रोज ही कह दिंदे ना भी इधर मीह पै गया इधर पै गया, हुण मैं असा रोज कहिंदे कि बठिंडे च मीह क्यों नहीं पैंदा, ते बठिंडे च मीह ऐदा पिया इक दो वारी कि ओह विच विचाले च पै जांदा है, मतलब कह लो कि थोड़ी जी एरिया दे विच पै जांदा, बाकी सारा सुक्का हुंदा इधरों उधरों। ऐदा
0: हाँ
1: मीह पै
0: जी
1: रहा, हुणे पता नहीं किस तरीके दा मीह है, ऐदा पै रहा। कहिंदे कहिंदे हुंदे कि सौन दे महीने च ऐदा दे ही मीह
0: ऐदा ही
1: पैंदे है ना।
0: पैंदा बिल्कुल जी।
1: सो जी देखो कदों जो भी मीह पेगा इंजॉय असी करना है। बाकी ये हुंदा कि जदों बच्चे स्कूल तो आ रहे ने, मावां लई ये भी चिंता दा कारण हुंदा कि जदों गलियां दे विच पानी भर जांदा है, वो हुण कई वार बच्चे स्कूल च हुंदे ते पानी खड़न दे नाल उहनां दी सहूलियत, जां कह लो कि वैन वाले लई भी थोड़ा जिहा औखा
0: हाँ
1: हो
0: जी
1: जांदा,
0: हाँ जी
1: बच्चों
0: हाँ
1: लई भी
0: जी
1: औखा हो
0: दिक्कत
1: जांदा
0: आंदी
1: है
0: है बच्चों नूं, बिल्कुल
1: ना।
0: जी
1: ये चीजा भी
0: बिल्कुल। हाँ
1: हैगी है।
0: जी
1: सो कोई गल नहीं, संता जी इंतजार है मीह दा, हुण इन्नी गर्मी तो राहत तां सानूं मीह ही दवाऊगा। ते फिर हुण ज्योति की करना है, आपां
0: आप एक सुनते हैं सोना जा गीत।
1: सोना जा गीत सुनना है। चलो ठीक है जी।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जी प्रोग्राम कार परिवार दे विच मैं सीमा मेहरा ते मेरे नाल बने हुए ने ज्योति। केवन ज्योति से चुप्पी हो गए
1: बाहर का मौसम देख रहे सी, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही
0: फिर
1: है।
0: दसो फिर मी आ रहा
1: देखिए
0: कि नहीं आ रहा,
1: साडियां घरे बैठिया भैणां की कर रहियां ने हुण।
0: की कर रही ने, पूछे फिर उन्होंने की कर रही ने। मतलब जे मी नहीं आया तां मौसम देखो, एक ना गल ए भी हैगी है कि चलो मी दी इंतजार ना इंतजार, सानू ये हुंदा कि मौसम जो थोड़ा ना ठंडा जिहा होवे ओह भी सानू वधिया लगदा
1: हाँ गर्मी तो
0: है
1: राहत मिल जाए
0: है
1: ना।
0: ना, वो भी चीज हैगी है।
1: हाँ
0: ते चलो मीह ने तां पैना ही है, ते पै जाना चाहिदा हैगा, फसलां लई भी बहुत जरूरी है। ते जिहड़े आपां कह लो कि जिहड़े जानवर कह लो पशु कह लो है ना, उन्हां नू भी उड़ीक शायद बारिश दी हुंदी
1: बारिश
0: है,
1: दी
0: क्योंकि उन्हां
1: हुंदी
0: नू
1: है।
0: गर्म है
1: हाँ
0: ना।
1: जी
0: आपां तां फिर अपने कोल सिर ढकण दे लई छां है,
1: हाँ
0: घर
1: जी
0: हैगा है ना, आपां उह
1: हाँ
0: करदे हां,
1: जी
0: पर उह जिहड़े जानवर धुप्पां च विचारे फिरदे है,
1: हाँ जी
0: ते उह चीजां भी हैगियां ने।
1: ये गर्मी नाल ना चिपचिपाहट ज्यादा है इस मौसम दे विच ना, वो ज्यादा अपन नूं करदी है ना,
0: हाँ, और चिपचिपाहट दा
1: है
0: मौसम तां देखो वो आएगा,
1: हाँ
0: वो
1: ना।
0: जदों भादो दा मौसम आऊगा ना, वो चीज
1: हाँ जिवें
0: होगी
1: हुण है घट है, पर हैगी है जिवें
0: हैगी
1: ना,
0: है।
1: हाले भी हैगी है जिवें।
0: तपिश हैगी है, ते एक ना गर्मी पहलां वाली गर्मी से अज दी गर्मी च बहुत फर्क है।
1: हाँ जी पहले रुख भी किन्ने हुंदे सी, हुण आपां नूं कितने क दिखदे है
0: रुख
1: ना।
0: भी, ते जिहड़ी
1: हाँ
0: गर्मी है ना,
1: जी
0: वो ही जिहड़ी गर्मैश है ना,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: तुसीं देखदे होंगे पहलां वाली गर्मैश, सूरज दी गर्मैश ते हुण वाली गर्मैश बहुत फर्क है। मैनूं लगदा घर घर जिहड़े एसी लगे है,
1: हाँ
0: कई बार लगदा
1: जी
0: कि वो जिहड़ी गर्मैश ना वो वाली है।
1: ये कह दिए जिवें आपां मशीनां दी गरमैश है हुण, पहले रब
0: हाँ
1: दी
0: वो
1: सूरज
0: चीज
1: दी
0: है। बाकी
1: गरमैश
0: पेड़ दी भी
1: सी।
0: तुसीं गल कीती है
1: हाँ
0: कि पेड़
1: जी
0: जिहड़े ने असीं लगातार कट रहे
1: हाँ
0: हाँ, सड़कां नूं चौड़ियां करन दे लई रुख जिहड़े ने कट्टे जा रहे ने है ना,
1: हाँ
0: ते
1: जी
0: रुख असीं लगा नहीं रहे, क्योंकि रुख देखो किसे आपां किसे बीज नूं बीजदे हां, उहनूं रुख बनने च टाइम लगदा है,
1: टाइम लगता
0: ते
1: है।
0: जदों असीं उहनूं कट दिंदे हां। ते अच्छा एक ही चीज ना इहनां दिनां च इह वी चलदी हुंदी है ज्योति, कि ना असीं इस मौसम दे विच जदों बारिश दा मौसम हुंदा है, मीह पैंदे आ, ते इन्हां दिनां दे विच असीं कुछ ऐ जे

जी बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग्स दी महारानी, हर दिल दी धड़कन। मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरा आले।

0: शोरू,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

0: top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने

0: मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत

0: क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
2: इज रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार

0: लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 106.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। साडे स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबक 2:30 दा समां हो चुका है ते हुण वेला प्रोग्राम सुरीली दुपहर दा।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरा आले।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800420223।
2: प्रोग्रामा संबंधी सूचना, मिती 26 जुलाई दिन एतवार सवेरे 11 बजे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों नाल सांझी करनगे अपने मन की बात।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: श्रोतियो आकाशवाणी FM बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्रामा बारे तुसी भी अपनी राय रख सकते हो अते दे सकते हो अपने नेक सुझाव प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच। प्रोग्राम विच तुसी सानू खत लिख सकते हो साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते। नाल ही चलदे प्रोग्राम विच तुसी फोन कर सकते हो स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते। प्रोग्राम श्रोता मंच तुसी सुनदे हो हर हफ्ते दिन शुक्र शाम 5:30 बजे।
3: ਤੇ ਸਰੋਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी,
1: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
0: जी,
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं, और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: शुक्रिया। बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
0: जी,
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं, और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना

0: पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से,
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ,
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इन्फॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती ही हमारा चैनल है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है।
0: जी
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो
0: बिल्कुल
1: कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है,
0: जी
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
0: जी
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है।
0: जी
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी, मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बन के, कभी नानी बन के, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बन के आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है, हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है। तो यहां पर एक गाना बनता है,
1: जी
0: बताइए
1: हाँ,
0: कौन सा गाना
1: बिल्कुल
0: सुनवाए?
1: बिल्कुल।
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: या बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ,
0: सुनते हैं
1: जरूर से प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये
1: जी हाँ,
0: गाना।
1: जी।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर FM आया, फिर SMS का जमाना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव FM तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज FM इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे। और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या BBC रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्ट्रीट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया FM और FM ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और FM में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए FM उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो FM के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली FM ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए FM ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना, श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं।

0: भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा है मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बड़ोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला। और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर, राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसे कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
1: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है,
0: जी
1: और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब 10th के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, 10th के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज़्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस
0: जी
1: मैथ्स
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफ़ी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग ऐसे मिल बजाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं, मैथ्स में चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं ना कि नहीं,
0: टच कर
1: अब तो
0: गई,
1: मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
0: चुनौती के रूप में
1: हाँ,
0: लिया आपने।
1: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहाँ पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, अलग अलग साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी,
0: जी बिल्कुल,
1: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: स्टेट
0: हाँ
1: लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला,
0: हाँ
1: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।
0: जी
1: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ,
0: जी
1: एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में, और दूसरा
0: भेजना
1: कि
0: नहीं है,
1: लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
0: शहर से
1: झिझक
0: बाहर नहीं जाना
1: झिझक
0: है।
1: रहती थी,
0: जी,
1: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे

0: इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है, मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और
1: अच्छा
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
1: क्या
0: था।
1: बात
0: उसके
1: है।
0: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे तो घर पे थोड़ा मैं, जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी। तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है। तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
0: नहीं
1: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता दीजिए
0: नहीं नहीं
1: हमारे श्रोताओं को।
0: नहीं नहीं
1: जी
0: उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी जी तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
0: जी
1: जीती
0: हाँ
1: थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं। और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं, तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं?
0: ठीक है। रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ। मीनाक्षी जी, हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खास तौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था,
0: हाँ
1: डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी
0: जी
1: और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग। तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ,
0: जी
1: वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूंगी। और कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह,
0: जी जी
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कंपटीशन भी रखा गया था बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हाँ बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या इस
0: अच्छा
1: तरह की चीजें,
0: जी
1: क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम
0: जी
1: लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहां पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कॉम्पिटिशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज,
0: जी
1: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप
0: अच्छा
1: पार्टिसिपेट कर लीजिए
0: हाँ
1: और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए।
0: हाँ
1: तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा,
0: छोटी
1: वही
0: सी
1: मेरी
0: आशा।
1: पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 days थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की। और फिर कंपटीशन वाला दिन आया और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में,
0: क्या बात है,
1: सिक्सटीन बॉयज एंड आई वाज द
0: वाह।
1: ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है,
0: क्या बात है,
1: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो

0: किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
1: जी
0: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।
1: बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती।
0: सही है।
1: और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहां पर मीनाक्षी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,
0: जी
1: फिर ब्रेक के
0: हाँ
1: बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी है।

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल, जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलता था।
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
0: जी।
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो
0: जी।

0: रात को हमेशा हम 1 घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफ़ी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम,
1: जी,
0: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी। और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम होता है और काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है। तो उसका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है, और ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया, क्योंकि काफ़ी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की, और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी, और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वड़ोदरा और आज मुंबई, तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए। और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
1: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा। तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें, और देखिए ना हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन है। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी
0: बहुत
1: बातें
0: अच्छा।
1: इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूं और एक शिक्षक हूं और सखी सहेली सुन रहा हूं, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूं। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले,
0: हाँ, श्योर श्योर।
1: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का
0: हाँ, बहुत अच्छा गाना है।
1: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था,
0: जी
1: सुनते हैं यही गाना।
0: जी जी

0: उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है।
1: जी
0: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
1: जी
0: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा, और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया? क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ
0: नहीं, बहुत आपने
1: जी
0: सवाल, बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार
1: जी
0: और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है।
1: जी
0: और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है
1: जी
0: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है
1: जी
0: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे।
1: जी
0: तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें,
1: जी
0: घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें। और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा।
1: जी
0: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि
1: बिल्कुल
0: एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है। और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए, घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी
1: जी
0: कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं।
1: जी जी
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म।

0: हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट,
1: बिल्कुल
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बैलेंसिंग इज द की आई
1: जी,
0: थिंक।
1: सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं, आपको शायद संकोच हो रहा होगा।

0: सकती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
1: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
0: जी
1: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात है।
1: अभी अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मैं, मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग,
0: क्या बात है।
1: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के, तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखें दूसरे सीखें। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
0: जी जी
1: बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
0: जी जी
1: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं।
0: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें, और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
1: क्या
0: है भाई।
1: बात है, हाँ?
0: आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे
1: अच्छा,
0: शहर से हुई है।
1: अच्छा।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की
1: अच्छा।
0: आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं।
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: पर
1: बिल्कुल
0: गाना है ये।

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे जरूर परवान दें, उसे जरूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है।
0: जी,
1: परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारा हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
0: जी
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
0: क्या बात है,
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर चीज का बैलेंस बनाए रखें। हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगी, मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें, और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई, और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से, और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंचे, और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका
0: नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला।

0: फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं, और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर, मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर, मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर, ये खानदानी काम है सर। खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छिपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी,
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छिपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर, मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी, छोटी छोटी वो चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
0: जी जी,
1: जिनकी महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, ईजाद किया, क्या मामला है?
1: सर, चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा। अच्छा। मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर, मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नक्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ। आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराय नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाई। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है? अच्छा,
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी और सर, ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहां रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहां पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी, मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा के? बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो एफएम पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर, आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार। जी
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी। सर,
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर, पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ
1: ठीक है, और हमारा अभी रथ यात्रा गया है,
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं,
0: वाह,
1: जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे
1: जी
0: ये बताइए कि आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है तो...
1: सर, आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है।
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: सर, मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं। ठीक
0: जी
1: है,
0: जी
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है। और आज
0: बहुत
1: के
0: अच्छा।
1: फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे मैंने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ। आज
0: अच्छा,
1: पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में? आपने कहा आप
1: सर, हम
0: जगन्नाथपुरी में,
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं सर। विविध
0: तो
1: भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई

0: सेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
1: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
0: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
1: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: है इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो, उसके
1: जी
0: आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
1: जी जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
0: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
1: और सब लोग वहां पिकनिक के लिए जाते हैं,
0: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
1: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है।
0: ये अभी गेट नहीं खुले हैं, बारिश
1: जी
0: भी नहीं हुई है, हल्की
1: जी
0: रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
1: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
0: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल
1: जी
0: तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे,
1: जी
0: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था,
1: जी
0: और कई जगह है वहाँ।
1: बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात
0: जी
1: आपने
0: हाँ,
1: कही है। अच्छा कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
1: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बाबरा का लिखा
0: जी हाँ,
1: हुआ।
0: और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है,
1: अरे
0: ये
1: वाह
0: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा, बताइए जी, भोपाल के क्या
1: भोपाल
0: हालचाल हैं?
1: में

0: हेलो फरमाइश।
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी,
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही सर,
0: जी
1: बड़े
0: मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा है।
1: फोन कनेक्ट हुआ है। तो सर विविध भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊं उतना कम है,
0: जी
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम,
0: हाँ
1: और जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
0: जी
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, और सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मी पना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी, वो मेरा एक दौर था जब दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है, उसके
0: जी
1: बाद मेरी लाइफ में वापस एक यू टर्न आता है,
0: जी
1: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है
0: बहुत
1: सर।
0: शुक्रिया। और आज
1: जी
0: किस
1: जी
0: गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मेरा अभी, क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है, आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता
0: नहीं नहीं
1: दूं।
0: बिल्कुल गाइए।
1: रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे
0: जी
1: टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वेद भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने
1: सर पहली
0: फरमाइश
1: बार
0: की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश। हाँ
1: सर जी
0: जी
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: जी सर, बस बहुत अच्छा हूँ। और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है, बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं। इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोरदा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से ही,
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारामन।
0: सीतारामन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में,
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले,
0: जी हाँ, जी हाँ,
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनिस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: मेरी स्पेशल सरप्राइज है। और सब कैसे है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगा था। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना, वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का,
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा, बोल से यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन नहीं चलते, हमारा गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी, हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, की हसीदत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा, बोलिए कैसे हैं जी।
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है। मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी।
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है। इस बार सावन लेट है, तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है।
0: जी, जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के, बेहद
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है।
0: जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था एमएनसी कंपनी में।
0: अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ अभी मतलब नया स्टार्टअप है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे
0: हाँ
1: धीरे
0: हाँ
1: जम जाएगा।
0: बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। जी
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

0: अपने मन की बात ते उस तुरंत बाद मानयोग प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर पेश कीता जावेगा ते पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण ऐसे ही दिन शामी 8 बजे प्रसारित कीता जावेगा।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, पिंडां आले ते शहरां आले प्रोग्राम दे तहत आ रही है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दी ओ आवाज जिसने बहुत थोड़े समय विच ही ड्यूट गीतां दी दुनिया च बनाया अपना राज।

जी बिल्कुल, ड्यूट सॉन्ग्स दी महारानी, हर दिल दी धड़कन। मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे।

प्रोग्राम दे वाचक अते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 24 जुलाई, दिन शुक्रवार, शाम 5 बजे, प्रोग्राम पिंडा आले अते शहरा आले।

0: श्रोतियो आकाशवाणी FM बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्राम बारे तुसी भी अपनी राय रख सकते हो अति दे सकते हो अपने नेक सुझाव प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच। प्रोग्राम विच तुसी सानू खत लिख सकते हो साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते नाल ही चलदे प्रोग्राम विच तुसी फोन कर सकते हो स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते। प्रोग्राम श्रोता मंच तुसी सुनदे हो हर हफ्ते दिन शुक्रवार शाम 5:30 बजे।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
3: जी श्रोतियो वक्फे तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। ते प्रोग्राम चल रहा है जी गल्लां चो गल दे अंतर्गत सिलसिला हैलो डॉक्टर। ते अज साडे नाल स्टूडियो विच माहिर मेहमान डॉक्टर मीनाक्षी सिंगला जी पहुंचे हुए ने, जो कि बतौर जिला टीकाकरण अफसर अपनियां सेवावां निभा रहे ने जिला बठिंडा दे विच। ते अज दा साडा विशा है टीकाकरण दा महत्व। ते एक स्रोते ने 0164-2240-331 स्टूडियो दा नंबर डायल कर लिया ते उन्हां दा असीं सवाल लै रहे हां। डॉक्टर साहब हैलो। हां जी स्वागत है जी प्रोग्राम च, अपना नाम दस दियो।
4: दर्शन सिंह
3: जी। दर्शन भाई जी की सवाल है जी?
4: अखां च गिड्डां ने जी।
3: जी डॉक्टर साहब अखां दे विच कह रहे ने जी कि गिड्डां दी समस्या है।
4: हां जी
3: जी मेरे ख्याल इन्हां दी कॉल कट्टी गई है जी। जी डॉक्टर साहब।
5: हां जी इहदे विच जेकर इन्हां नूं गिड्डां आंदियां ने गियां तां कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स मोक्सीफ्लोक्सासिन पा लैन ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
3: ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਕੋ ਸਰਜਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ।
5: ਥੈਂਕ ਯੂ
3: ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੰਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ

0: जी दोस्तों, आज असी याद कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सैनानी, समाज सुधारक, पत्रकार अते राष्ट्रवाद के मजबूत स्तंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नू, जिन्हां दी जयंती हर साल अज दे ही दिन मतलब 23 जुलाई नू मनाई जाती है। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई विच कुछ अजिहे महान व्यक्ति होए जिन्हां ने ना सिर्फ लोगों विच देश प्रेम की भावना जगाई सगों उन्हां नू अपने हक्कां लई खड़ा होना भी सिखाया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उन्हां महान हस्तियों विचों ही एक ने।
1: जी रमनीत, तुसी साडे स्रोतां नू बाल गंगाधर तिलक दे जन्म दे बचपन बारे भी कुछ दसो।
0: जी मिनाज, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 नू महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले विच होया ते उन्हां दे पिता गंगाधर राम चंद्र तिलक संस्कृत दे विद्वान अते अध्यापक भी सन। बचपन तो ही बाल गंगाधर तिलक बहुत तेज तरार, सच्चे, निडर दे सुभा दे सन। वो पढ़ाई विच बहुत होनहार सी। गणित दे संस्कृत उन्हां दे मनपसंद विषय सी। उन्हां ने अपनी उच्च सिक्ख्या हासिल करन तो बाद वकालत दी डिग्री भी है जिहड़ी ओह प्राप्त कीती, पर अपना जीवन देश दी सेवा लई समर्पित कर दिता।
1: जी दोस्तो, बाल गंगाधर तिलक दा मनना सी के जे देश नू मजबूत बनाउणा है तां सब तो पहला सिक्ख्या नू मजबूत बनाउणा पवेगा। इसे उद्देश नाल उन्हां ने अपने साथियां नाल मिल के न्यू इंग्लिश स्कूल अते बाद विच डेकन एजुकेशन सोसाइटी दी स्थापना कीती।
0: जी, तिलक एक निडर पत्रकार भी सी। उन्होंने दो प्रसिद्ध अखबार भी शुरू किए, केसरी जो कि मराठी भाषा विच सी अते दी महाराटा जो अंग्रेजी भाषा विच

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1455555 ते कॉल करो।

0: नमस्कार श्रोतियो, अज दा प्रोग्राम शाम सोहानी लैके हाजिर हां जी। मैं खुशप्रीत शेरगिल। इस प्रोग्राम दे अंतर्गत सब तो पहलां तुहानूं सुनवा दिंदे आं एक स्पोंसर्ड प्रोग्राम जिस नूं स्पोंसर कीता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। श्रोतियो, अज तुसीं इस दा पहला भाग सुनोगे।
1: We bring you a talk on environmental jurisprudence by Anna Apria, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं। एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत लोग, बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन की कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न of the Indian government as well as the Indian constitution. And few more provisions जो कि usually छूट जाता है लोगों के notice से, क्योंकि 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government,

0: विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मेंशनड होता है. इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, जिसमें सारा environment की सारी चीजें cover होती हैं, but that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं, जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many big countries of the world are exiting and entering it again and again. But India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, ki kitne tarike ke rights hain. Environment law कहाँ कहाँ से आ सकता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड इन द वेरी बिगिनिंग, उसमें मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ थ्रू अमेंडमेंट्स, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स, कि इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस वॉज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्ती चंद का केस, जिसमें देर वॉज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इशूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहां पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने से, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम

0: कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुमोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम सी मेहता, ही वॉज अ बिग टाइम एनवायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर। तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले, क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड। So, for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case as and the oleum gas leak case. So, just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ye tanneries se jo pani, jo chemical factories or tanneries se jo waste nikal ke pani mein ja raha hai, which is polluting the Ganga river. Eventually, the court had to order to shut down these tanneries. So, this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, isme court ne pehli baar एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए।
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: श्रोतियो आकाशवाणी FM बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्रामा बारे तुसी भी अपनी राय रख सकते हो अते दे सकते हो अपने नेक सुझा प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच। प्रोग्राम विच तुसी सानू खत लिख सकते हो साडे पते इंचार्ज प्रोग्राम श्रोता मंच मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बठिंडा ते। नाल ही चलदे प्रोग्राम विच तुसी फोन कर सकते हो स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते। प्रोग्राम श्रोता मंच तुसी सुनदे हो हर हफ्ते दिन शुक्र शाम 5:30 बजे।
3: इस वेले तुसी सुन रहे हो मालवे दी शान स्रोतियां दी जुबान आकाशवाणी FM बठिंडा। FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते।
4: जी स्रोतियो स्टूडियो की घड़ी ते समा 7:20 ते 50 सैकिंड का एक होर स्रोता जो है एक साडे नाल जुड़ गए जी प्रोग्राम दे विच। पहले स्रोता ने ते आपां स्वागत कर लैने आ। हैलो
5: हैलो माजमी नमस्कार
4: जी। नमस्कार बाई जी, स्रोतियां नूं अपना नाम दस दिओ ते कित्थों बोलदे हो।
5: माजमी सुखवीर सिंह छाजली बोलदा जी संगरूर कोलों
4: जी। ते बाई जी गीत दस दिओ जी, किन्हां दी आवाज़ च सुनना है।
5: माजमी अमृतमान जी दा गाना दस दिओ जी।
4: जरूर सुनावांगे बाई जी। संगरूर जिले दे विच मौसम दा की हाल चाल है।
5: मौसम मैडम जी बहुत वधिया, थोड़ी मोटी कल मीं बारिश भी हुई सी, मौसम ठीक हो गया, कुछ गर्मी तो राहत मिली है जी।
4: चलो चंगी गल है जी, जे साडे स्रोतियां नूं गर्मी तो राहत मिलदी है तां सानू भी इहो जिहियां गल्लां सुन के राहत मिलदी है। प्रोग्राम च तुसीं शामिल होए धन्नवाद तुहाडा।
5: ठीक है मैडम जी, शुक्रिया। ओके
4: स्रोतियो आपां बाई जी दी पसंद ते सुन लैने आ प्रोग्राम दे विच इह गीत। उस तों पहलां सुन लैने आ कुछ संदेश।
0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
6: श्रोतियो आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते तोड़ा मॉर्निंग शो प्रोग्राम सजरी सवेर मिति 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार एक नवे रंग नवी उमंग ते नवे अंदाज दे विच। दोस्तो इस दिन प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे विच आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते मेरे नाल गुरदीप कौर गिल जी फिल्म दिल दियां गल्लां दी कहानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ते होर कई दिलचस्प तथ लेके आप जी दी खिदमत दे विच हाजर होवांगे।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी श्रोतियों, एक होर स्रोत

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि सरकार परीक्षा पेपर लीक लई जिम्मेवार लोगों नूं जल्द अते सख्त सजा देण लई फास्ट ट्रैक अदालतां कायम करेगी। उन्हां भरोसा दिता कि देश दे नौजवानां दी भलाई अते भविख उन्हां दी पहली तरजीह है। नीट पेपर लीक मामले ते विद्यार्थियों दे विरोध मुजाहरे समेत वक्ख वक्ख मुद्दियां ते विरोधी धिर दे विरोध तों बाद संसद दे दोवें सदनां नूं दिन भर लई उठा दिता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशां दे दौरे दे आखिरी पड़ा ते अज रोमानिया दे बुखारेस्ट पहुंचे ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विच सुरक्षित अते बिना रुकावट वाले अंतरराष्ट्रीय जलमार्गां लई कहा है ते 23वीं राष्ट्रमंडल खेडां अज स्कॉटलैंड दे ग्लासगो विच शुरू होण गियां। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि केंद्र पेपर लीक विच शामिल लोगों नूं तेज अते सख्त सजा यकीनी बनाउण लई फास्ट ट्रैक अदालतां कायम करेगा ते जोर दे के कहा है कि विद्यार्थियों के भविख की रक्षा करना सरकार की पहली तरजीह है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के नौजवानों की भलाई अते भविख तो वध कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हों का यह बयान दिल्ली के जंतर मंत्र से नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विद्यार्थियों के रोस मुजाहरे दौरान आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों इस संबंध में सारे जरूरी कदम चुकन के निर्देश दिए ने। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले के विरोध में मुजाहरा कर रहे विद्यार्थियों को गलबात ले आने की अपील की है ते कहा कि सरकार सारे मुद्दों से चर्चा लई तैयार है। मीडिया नाल गलबात करदिया मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटियां विच चल रहे विरोध मुजाहरियां दे विद्यार्थी प्रतिनिधियों नूं गलबात लई चार पेशकशां कीतियां गईयां ने। उन्होंने मुजाहरा कर रहे नौजवानों नूं गलबात लई स्थाई सद्दा दिता ते कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अते ओह गलबात दौरान मौजूद रहणगे। उन्होंने यह भी दस्सिया कि गलबात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दे निवास स्थान जां उन्हां दे दफ्तर विखे खुले मन नाल कीती जा सकदी है। उन्होंने कहा कि गलबात तों बिना कोई हल नहीं निकलेगा। नीट

0: मांग की थी। ये मनीला विच 21वें पूर्वी एशिया सम्मेलन विच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है कि नाविका नागरिक जहाजा जा बुनियादी ढांचे ते हमले किसी भी हालत विच बर्दाश्त नहीं किते जा सकते। उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था अनिश्चित ते अस्थिर है जिस विच मुकाबले ते दुश्मनी दे नाल नाल अंतर निर्भरता ते सांझे हित मौजूद ने। उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिकता लई टकरावां दे प्रभाव नाल जूझ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आसियान केंद्रीकरण खेतरी स्थिरता अते एक आजाद खुले अते खुशहाल हिंद प्रशांत खेतर दी प्राप्ति प्रति भारत वचनबद्ध है। केंद्रीय रेलवे राज मंत्री रवनीत सिंह बिटू ने पंजाब के मुख्यमंत्री पवन सिंह मान नूं पत्र लिखे राज विच कई महत्वपूर्ण रेलवे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टां दे लागू होण विच हो रही देरी मुख तौर ते राज सरकार नाल विचार गोचरे पए मुद्दयां दे कारण देरी वल ध्यान दवाया है। श्री बिटू ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ राष्ट्रीय महत्व का मामला ने सगो पंजाब के आर्थिक विकास खेतरी संपर्क अते समुचे विकास लई भी अहम ने। पत्र मुताबिक इन प्रोजेक्टा विच फिरोजपुर पट्टी नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट राजपुरा मोहाली नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट रामा मंडी सदा सिंह वाला नवी रेल लाइन प्रोजेक्ट अते रोड ओवरब्रिज ते सीमित ऊंचाई दे सबवे शामिल ने। ज्यादातर नवे रेल लाइन प्रोजेक्टा च देरी जमीन हासिल करन दे अमल नु पूरा करन च देरी करके हो रही है। श्री बिट्टू ने श्रीमान नु लंबे समय तो देरी दा सामना कर रहे इना रेलवे प्रोजेक्टा नु जल्द पूरा करन लई निजी तौर ते दखल देण दी बेनती कीती है। खेडा विच 23वीं राष्ट्रमंडल खेडा आज शाम स्कॉटलैंड दे ग्लासगो विच शुरू होण गिया। 10 दिनां दे समागम विच 74 देशां दीआं टीमां हिस्सा लैण गिया। भारतीय दल विच 125 मैंबर ने जिन्हां विच पैरा एथलेटिक्स भी शामिल ने जो खेडां विच हिस्सा लै रहे ने। आखिर च खास खबरां इक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि सरकार परीक्षा पेपर लीक लई जिम्मेवार लोगों नूं जल्द अते सख्त सजा देण लई फास्ट ट्रैक अदालतां कायम करेगी। नीट पेपर लीक मामले ते विद्यार्थियों के विरोध मुजाहरे समेत वख-वख मुद्दयां ते विरोधी धिर दे विरोध तों बाद संसद के दोवें सदनां नूं दिन भर लई उठा दिता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी पड़ा ते अज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचे ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विच सुरक्षित ते बिना रुकावट वाले अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग लई किया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण स्टूडियो दी घड़ी ते समां शाम दे 7:40 ते 20 सैकिंड दा। आओ हुण स्रोतियो सुन लैंदे आं प्रोग्राम शाम सुहानी दा बाकी हिस्सा। खबरां सुनने लई जाण तों पहलां मिठू सिंह प्रोग्राम दे विच शामिल होए सी ते इन्हां ने फरमाइश कीती सी कि सानूं अमर सिंह शौंकी ते इन्हां दे नाल मोहन सिंह जी दी आवाज़ दे विच मिर्जा गीत सुनाया जावे। जरूर सुनावांगे जी। उस तों पहलां सुन लैंदे आं संदेश।
2: श्रुतियो आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तोड़ा मॉर्निंग शो प्रोग्राम सजरी सवेर मिति 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार एक नवे रंग नवी उमंग ते नवे अंदाज दे विच। दोस्तों इस दिन प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे विच आप जी दा दोस्त बलजीत शर्मा ते मेरे नाल गुरदीप कौर गिल जी फिल्म दिल दियां गल्लां दी कहानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ते होर कई दिलचस्प तथ लैके आप जी दी खिदमत दे विच हाजर होवांगे।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के

0: संथाल परगना क्षेत्र में। वहां का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजी जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को,
3: पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।

0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
2: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
3: जी महाराज।
2: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
2: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
2: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
4: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
5: महाराज की जय! महाराज की जय!
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
3: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
3: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
7: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
3: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
3: महाराज की जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
2: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
13: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोदकर निकाली गई तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये

0: मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
1: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी?
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
1: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ?
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया,
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी, अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
7: अरे मशकूब भाई,
8: जी जनाब,
7: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ।

0: गला सूख रहा है।
1: लीजिए जना।
0: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो
1: जनाब। थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
0: रखो रखो।
1: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
0: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया।
2: ये अमृत वाला आ गया।
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
0: मशकूब भाई।
1: जी जनाब।
0: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
1: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है। अल्लाह मियां खुश होगा, आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
0: लो। बस बस।
1: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
0: सही कहा मशकूब भाई।
1: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
0: अभी तक तो कुछ नहीं।
1: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
0: अरे नहीं नहीं
1: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
0: भाई
1: जी,
0: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
1: क्या बात करते हैं,
0: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
1: इसमें नेकी की क्या बात है?
0: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: ये तो मेरा फर्ज था।
0: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
0: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
0: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
0: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
0: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
0: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
0: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे न लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए। मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब
6: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात करते हैं,
6: क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा।
1: ऐसा ही।

0: दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
1: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
3: मुंह उठाए खाली आप चले आते हो?
2: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
1: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
1: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
1: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
0: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
4: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? या खुदा माफी, माफी रहमत। अमृत वाला आ गया।

0: क्या रंग चमक।
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग चमक,
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: हुणे तुसी सुन रहे सी एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी NCERT ने। स्रोतियो, अज तुसी इस दी 1334वीं कड़ी सुन रहे सी। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी ते समा 8:30 ते 40 सैकिंड दा हो गया। आओ हुण सुन लैने आ अगला प्रोग्राम, पंज पाणियां दे गीत।
7: पंच पाणियां दे गीत।

0: जामो आंधी मंडी वे तेरे काजू बसेरे
1: मैनू ले ले मुल पड़े मैं फिर दावे करनो
0: जामो आंधी मंडी वे तेरे काजू बसेरे।
2: जी श्रोतियों, इस गीत नूं सुनन दे लई साडे कोल फरमाइश पहुंची है जी। बहुत सारे खत भी पहुंचे ने जी, ते व्हाट्सएप दे राहीं सुनेहे भी पहुंचे ने। सो सब तो पहला जो खत मैनू दिखाई दे रहा है जी, ए 26/5/26 का लिखा हुआ है जी खत। करणवीर हाउस गुरु गोविंद सिंह नगर भुचो कैंचियां बठिंडा तो। लिखण वालियां दे नाम ने जी प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दुपिंदर, वरिंदर ते सिमरन। इन्हां दे नाल कुलदीप, एकम, दमन ते अभिजोत। नाल ही इन्हां ने खत शामिल करन दे लई धन्नवाद भी कहता। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद है कि तुसीं प्रोग्राम दे विच खत भेजे है जी। अगला खत साढ़े कोल भेजे जो पहुंचे है जी पिंड मूलियां वाली जिला फाजिलका, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जन्नत काठपाल ते दीपा सब्जी वाला। सो ये जिहड़े सारे साथी ने जी, इन्हां दा भी धन्नवाद कि प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने। खत इन्हां ने भेजे, तरीक उन्होंने वैसे नहीं लिखी, होर भी जो मेरे को खत ने उन्होंने भी तरीकां नहीं पाईआं गईआं। खैर तरीक पाउण दे नाल पता लग जांदा कि किन्नी तरीक का भेजे ते किन्ना क लेट फिट हो गया जी साढ़े कोल प्रोग्राम दे विच शामिल करन दे लई जां फिर साढ़े तक पहुंचण दे लई। अगला जो सुनेहा साढ़े कोल जां खत कह लो साढ़े कोल पहुंचा है जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। सो इन्हां सारे साथियां दा भी धन्नवाद। इन्हां दा एक होर खत भी पहुंचया होया जी। खैर कोई गल नहीं जी, असीं एक खत इन्हां दा शामिल कर लिया इस प्रोग्राम दे विच। और पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाणा

जी आपां गीत सुनदे रहांगे। अंग्रेज सिंह फौजी बादल रोड पिंड नंदगढ़ जिला बठिंडा तों इन्हां दे नाल जसप्रीत, सुखमनजीत, अंतर सहज, पलविंदर, सरबजीत, दीपिका, प्रेमजीत, सिमरनजीत ते बीबी वी जुड़े ने जी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 8:44 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 9 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर

0: बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

0: और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: At the level of the Prime Minister,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज

0: दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight. And Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन नीट पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition's protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion.
4: Today, I appealed on

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।

0: टिशी नवाब ऑर्केस्ट में अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है छोटी बहन।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है लाखों में एक।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ख्यालों में
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: हाय हाय सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाई जान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
3: वहां भाग रही तू मैं, काले से डर गए क्या?
4: हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम काले हैं तो

0: ఐ తేర ఖయాలా తందానా ఏ గోరే గాలా తందానా ఏ రేషమి బాలా తందానా ఏ సోలా సాలా తందానా ఐ తేర ఖయాలా తందానా హమ్ తేరే తేరే తేరే చాహనే వాలే హై హమ్ కాలే హై తో క్యా హువా దిల్ వాలే హై.
1: దోస్తో, మహమూద్ కో పహలా మౌకా దియా థా गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में. इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला. एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की. पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है. यह फिल्म आई थी 1956 में. बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई, प्यासा. इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने. उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते.
2: हम भाई वाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया.
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया. दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है.
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो. अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी. मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया. लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
4: बोल दो बापू.
3: बोल दे बेटा.

0: रुपया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

कह के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: கண்ணா என் கண்ணா
1: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: பத்கம்மா
3: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
4: वनकम जी,
5: ओ पहुंचिए ना।
4: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
5: क्या है?
4: खिड़की बंद करना जी।
5: क्यों?
4: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
5: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
4: अयो पहला बोला ना ऐसा बात। डाय बोला, तुम आना गाना गाना आना।
6: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
4: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है। या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला। या ताली दे रहे हैं, गाना गाना
7: चल चल।
4: तुम बताना बताना
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
8: यह कच्चा

ಇನ್ನಾಯ ಅದು ಯ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮ

0: जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: तुम्हारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, में बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा ने।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: अच्छा
1: हर्रा सुहाना होगा।
0: अच्छा
1: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शोक को इजाजत। नमस्कार।

पेशी खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बारिशों का ये भीगता मौसम जाने कितनी ही कसक दिल में जगाता है। रात भीगती है तो भीगते हैं ये रेशमी नजारे, बूंदों में झिलमिलाता वो उनका हुस्न शबाब। अजब हुस्न की कारीगरी है ये उनका शबाब, बंद कलियों में हो जैसे फूलों का इंतखाब।

पास इतना भी न आइए कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोचकर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आंखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दिल धड़कता है, दो घड़ी तो बैठ जाइए, न जाइए दूर कि जी घबराता है। दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे, कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए। जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी थम थम।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई, कुछ टूटकर लबों को भिगो गई। संदली रात में बारिशों का रंग चढ़ता गया, लम्हा लम्हा उनके रुखसार का रंग गुलाबी होता गया।